0: तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
1: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक दे वो आमाल दासी दी जिद अगी सवाब इंसान ता द मर्ग नपस प कबर के हम मिलावेगी, यानी सदका जारिया आमाल। अवल चाता इलम खोदल, द्वहम नहर जारी कवल, द्रेम द उबो कुए जोड़वल, सलोरम वन लगवल, पिंजम जुमात जोड़वल, शपगम कुरान मजीद मीरास जोड़वल, यानी कुरान मजीद चाता खोदल या कुरान मजीद अध्या कवल द चाता पारा। उवम नेक औलाद प्रे खोदल प दुनिया की चि अगा द मर्ग न पस हम ताता दुआगाने कई औस्ताद मगफिरत दुआगाने ग्वाड़ी।

0: एकरा दे चारे चारे चिमजना हो चौरा सा एक ना तो ओजना जवा तो पता लगी छे बिल्कुल देवे चारे नहीं है बस दही पीरियड ना बाखला खाल के दौको ने खाल के ना ओखला खुदा ही शाका बहरहाल नन या तो का जिम्मेबारा का उड़ेस दो चाहे दवा न होगा टेसा दो
1: बिल्कुल
0: मोखलिया तो ना ढेर उम्मीदी ना मो चिक्कर खिताब से पलस वे तो युवा उड़ेस पे लावी ची बिरयानी और पखा का तो दमा नट रहा है चाहे तो आलोको पखाउल उसदा दी कहना बिल्कुल गलती सरा दे खुले तन उड़े मारी है बस रहेगा तो दस सड़ाई खोपारोक मोडर बाद लगी सा सब अमेरिका टोले तो एक तवेर का सड़ा एक तवेर को दही टेम न दही ने मिर्ज दे परा चिका करा टीटा कर ला एक खरे अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: अस्सलाम एक खरे करता उरेज गोरा तो न चार दो खली ओ मान से दो रेडियो ता काल का इच उधर मोडेरा तिरा वाली दो पाबंदी मड़ी तक शेनी पसार शवे डेरे बपछे ओ आखिर शवे गिलास उन डरे के बिल्कुल नीमा मड़ी नवे जो तनवे रखा ओय पसार शी बप छाक न बोता पता उला गेदा कना जे दो बेखिन ये बु नगड़ा पाई सलोमा तो मारी नगान वाईदा बेदा चरे चारे काई
1: ओके भाई तनर मारे
0: तो एक सीनी ओ दाई पाक जर्सी सा एक रे खैर दार तो उस सर्फ से पोजीशन दा सर्फ ते ख्वाशल
1: मेरी ना भाई दा सिस्टर जल्दी दा देर में ख्वाशल
0: अच्छा माशाल्लाह अल्लाह दे गुल्लरा वासे मिसाल के तौर पर दे जोंता दे कपड़े उ मिंजले पशे कदे देवल दाप सो मिंजले बिल्कुल मशीन ना खत्या चेपाता उता उला के जी और नेरा दे बारखा दी आया मगा जा और मातर करा उता पका चे दो केर से खिजमात नकाई नन ना भाई काट का उसारा ख्वाशा दे दो अच्छा बस अला दे देता तोफिक वेर को एक खैर सब पैगाम मेरे का टोल लिस्टनर था बिल्कुल पलतिया हुआ है पकाट से लोसीना चिक्का टेला पेटलना क्षेना और तिरावती न कवा ओ अलीना तका रिसना में जी नोमिया रखा तो सो ये तविया चाटी पाटी रे बजे आवा कोलिया मिंजा ख्वाशा दे दो कना इंशाल्लाह बस रहेगा ओके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दामिर सरा अलीना खैर दो और इकरा खैरवा और दी मशला दे ख्वाइंद खपल मान से चिदमरा जोड़ सुविधा का ना बेडेर ख्वाइंद ख्वान काई अक्सर जॉइंट फैमिली से खोजदा हुई ना दा जॉइंट फैमिली दो चे मिसाल चिचा केर से ख्वाइंद विदा आगा बरकत न डक केर भी ख्वाइंदे भी पकेर से सारा माइंदे भी मेर भी ख्वाइंदे भी टेर ख्वान का यला दे हर चा केर से बरकत ना होचे बलकल रोखन गोर से किम जना अस्सलाम वालेकुम
2: रहमतुल्लाह
0: लोई करम दालम खाना शी बरबारी जोड़ी तकड़ा
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: ओ लिश्की दे लगला गिला लिश्की इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो करे जमो गड़ा टोल दे खाल के दे सर्वेरे ना मैं डकड़ा इदम रडेर दा शिकारी ना ओ मटी है ओ सूता भी रे बुझे

तपाईँ पछ्ताउनै भयो खुसी भाइ निजमान भाइको सलाम जी वालेकुम सलाम थ्याङ्क यू सो भेरी मच जी अच्छा तन्हा हो जी तन्हा यो जहान मन निजमान भाई तो सलोम वरा सिराल जी नेक्स्ट मेसेज चाल का वही ची पुछ रहा था वो आया खाना नहीं बोले उसकी गुजरा कुछ जुमा दसा वही ची अस्सलाम वालेकुम मैं उजाला शफी हूँ मंगल मेले से और मेरी तरफ से आपको स्पेशल सलाम अच्छा इनको स्पेशल सलाम और आपको भी सलाम छे निम्रा वजीरता है और देसरा सरा यूसरा वजीरता है और रोशनी वजीरता है महवेश हटकता है और देवा महसूत है जी थैंक यू सो वेरी मच जी बिल्कुल उजाला शफी जी बोलो खुरा कोई तजी तो सलमुना वरस दल दे हवा पे जमो ने वही छे भाई रात को ओके जी थैंक यू सो वेरी मच भाई जी भाई पठान की लिंक आना प्लीज भाई जी गजलदार शो पठान की लिंक है ओके जी कोशिश वो कुछ है तो खोजा और इधर बिल्कुल टाइम सर भी ही काम पौधे दाया अच्छा मैसेज जो ना पौधे चल करना टोल मैसेज जो बसे कले कले सराई नवरे सी के नाम मैसेज जो ना डेर भी टाइम काम ही भी अपने इस प्रोग्राम के तस्वीर लाऊं पाके मैंने बुझ रहा ना रोना न बाद आवे आप अकेले बना वही भाई थैंक यू मैसेज शामिल करने के लिए दिवा महसूद ठाक वजीराबाद ना जी बस कोशिश मूवी का ना खोरा कहे छे शोक हम मैसेज हो की जी और शोक जी कोशिश जी चाकाल रुसी चाकाल हाँ टाइम को बस टाइम दस वीक ने टाइम कमी भी कल करा नो बाकी मैंने बहुत तो से बिल्कुल जरूर ना न बताए सलाम भाई कैसे हो आवाज बिल्कुल ओके है मोहम्मद रमजान नवरंग ने जी नवरंग ने रमजान तो जी थैंक यू सो वेरी मच से खुश रहता हूँ से ओके जी आपका साइलेंट सिस्टर जी प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है जी बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से शो करते हो जी थैंक यू सो वेरी मच जी सो ख्वाजा और इधर को बिल्कुल ये प्रोग्राम के मुझे तो से साथ दगमल करते हैं ठीक है दर 12 बजे पूरी हुई 12 बजे पर तो सुना इज्जत चिरागा गोड़ा सदा से खबर है प्रोग्राम के जगह तो से मुझे छाने भी लगे दले अगे मैंने बख्शना मजरा तो दास से खबर है आगा तो से मुझे छा लगे दले हुई नगा दिखल जिंदगी साथ जोड़ के जी तो सब डेरा डेरा फायदा है ना वरसी जी छोड़ा वृदुन खुश जहान मना कहो कागा टांग कबरी दुन की दीजिए कागा दी कर कबरी दुन की दी आवाज में दा छूटे बुटा आवाज में चिरते चिरते गौरे दो और बर्दाश्त करो जी तहे दिल सर जी शुक्रिया चारों तक मैसेज करो चारों तक काल वक्त लो जी अगो हाँ यू जहान मना थैंक यू सो वेरी मच बंडल ऑफ थैंक्स जी और चारों सारा खामोश खामोश है कि दा प्रोग्राम हो रहे दलो अगो हाँ यो नड़े मनना जी बंडल ऑफ थैंक्स जी दे ठोलो सिफात कश्मीर पाकिस्तान तरफ ना तो सदा प्रोग्राम सीधा आगा पेश कीजिए जी सिफात कश्मीर पाकिस्तान जी खलो कस्टमर था खलो और दुन को था छोटी छोटी प्रोडक्ट सीधे आप मार्केट के अगर खड़ी दीजिए अवेलेबल दी चाहे आगे कीजिए मुख्तलिफ किस्म शैम्पू दीजिए हर्बल शैम्पू दीजिए हर्बल शैम्पू मतलब जी हर्बल से अगर जड़ी बूटियों ना तैयार हुई आगे मुझे असरात नहीं साइड इफेक्ट है नहीं जी फायदे फायदे भी जी तो विश्तो सह मसले भी आमला शैम्पू पाकिस्तान प्योज वाला शैम्पू पाकिस्तान जी कल भंजी वाला शैम्पू पाकिस्तान तो सी विश्तो इस्तेमाल वाला है जी बेहतरीन किस्म फिसवाश पाकिस्तान राइस फिसवाश लेमन एंड विटामिन सी फिसवाश था जी वाड़ा इस्तेमाल वाला है बेहतरीन रिजल्ट ब्यूटी क्रीम जी इस्तेमाल है कोल्ड क्रीम इस्तेमाल है क्रीम ब्लीच इस्तेमाल वाला है जी और सिफात हर्बल स्किन स्प्रे से धागा इस्तेमाल वाला है सिफात की जी बिल्कुल जैतून ऑयल दीजिए अगर बेहतरीन रिजल्ट इस्तेमाल वाला है और तो हर जगह मिला जी टांग की बिल्कुल जरूरत खाना जी से बिल्कुल होल सेलर दे जी चाहे जरूरत भी हौसल है नवरंग की जी बिल्कुल जहांगीर भैया अगर मिलावे जी बनु के हक नवाज भैया अगर मिलावे जी करक की जी बिल्कुल बाइस ग्रैंड शॉपिंग सेंटर दे जी और जी बिल्कुल करंग सराउंड के टोल मिलावे जी टांग की बतुस्ता मिलावे जी लकी बनु के मिलावे जी मंगल मेले के मिलावे जी यानी तो से पछताने वक्त जनरल कॉस्मेटिक स्टोर के तो सिफार कॉस्मेटिक्स टोल प्रोडक्ट इंशाल्लाह मिलावे जी मोस्ट टाइम सर तरह सुधर लेता है और बिल्कुल जी ठुलू था जुमा छठ मुबारक शाह और जिंदगी में डेरा शाह घोड़ा उस पर रुके मुता इजाजत जी पाकिस्तान जिंदाबाद सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फाइंदाबाद जी दिलो एलाफमान

0: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमात आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
2: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: احمد بھائی زہ ہر اور شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
4: اورے حساب گان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل

0: तड़ाए माशे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय उपस्थित थी
1: जनाते से तारखा ना पर शापर के हम एश्मा वाशिंग पाउडर उपस्थित थी
0: एश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस्तर अंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखा ना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श एक डाले हो चे करा ना में कुरता एश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े थी वो स्टोल कुर वाला ना फसल थी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब वो दर तो ये या कि पर एश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना एश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी कि कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर इस बात एश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पावी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाव मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाव तो दफा बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शेयर मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर ता मिला भी जी।

अच्छी एवरीथिंग प्रोग्राम से गप छ मसलाई शेयर देखना 0927 बिल्कुल कालर रहूंदी वो 8503 मैंने मैसेज हार रहूंदी तोलो दरत से मिले कहना माखा बके दे तू तो सर्वसिरियो मुसारनी अच्छा अच्छा अच्छा सर जी बता दर ठके कहना मेन ठके उदावर था प्ले की कहना नो सर शायद सेवे ले दी सेवे

ची बिल्कुल और दिन के लिसनर समाइन सुम रहा किम किम दूसरे प्रोग्राम हो रही है ना नो लिसनर समाइन प्रोग्राम से किम टॉपिक दे आगे दर्शा रचा ना और तो दे इम्तियाज किंगी वाला मनोलाज किन्हे स्पेशल फॉर्मेश हो बार बार उतार किया रहे मेरी भाई दिमिर दे पर चिकन दिखा ना सना सब वो के करा सर बने वो रुआ क्या ना नो बस स्पेशल में चिकन दिखा ना आगे दे पर नो और दिन के लिसनर समाइन सुख मोहन प्रोग्राम हो रही और ये चेयर मिस गार्डन का लोगों दे प्रोग्राम ते मिर्दर ता गुड़ी नोजीर नो स्टाइस दो से कन में दो सौ बयान में 0927291292 बने कालो के वो दे प्रोग्राम है सा जोड़ा से यानी 0921 2922 बने कालो के वो प्रोग्राम से किमी करा सवाल कालो में से जो शामिल है और मैसेज दे पर तर के कार दे बेल शो राइट मैसेज चलो से बोर्ड तो लिखे आर ए के होटल नंबर से आर ए के पर मान से इस किस मास फेस इस किस मास डॉट इस किस मास सवन पर लिखे बेओद आर ए के वो लिखल से आर ए के नंबर से किमी करा स्पेस फेस नंबर डाल दे अखपल अनोम अखपल इलाके नोम अक्सले बने पैगाम अक्सले बने मैसेज और सेंड के पांच आज तेरे बने से कल सवाल मैसेज और रोवर चीज ना डायरेक्ट में नेक बनेगा ये प्रोग्राम में से जुड़ी थी अनन प्रोग्राम से देखे ना आधा चिकन देखना स्पेशल पर जो कैसे डेर जो तो अवर्दिंगी डेर जो तो बस लिसनर वैसा हमें शाप यहाँ आसन आसा यो टॉपिक मैंने खबर किसे के ना वनन चिकन ने कहना पते टॉपिक मैंने खबर किसे वो का अज के ज्यादा हार कोर हार यो चिकन ने कहना धार धा मसला था जो कहना नलिश के शांत चिकन ने कहना पते टॉपिक मैंने खबर किसे वो के कहना हम वो बिल्कुल जरूर जरूर पते टॉपिक मैंने खबर किसे जो कहना चे अगर टॉपिक चिमिर सन आसो سنه سره شاور ور سره درې می نو ان شاء الله هغه ټاپک شو مش خبره کیسه زکه کنه چې د میړه همیشا کوشش دا کړی چې د میړه اور دینګي د میړه لیسنر د میړه سمای نه د میړه پروګرام نه سس دان کړو کی زکه چې پروګرام ولګي ور دی ولګي ای پر دی کې سس شای دی سله گیا د سن نه دی مش کله ور دی ټیون کی چې اوه مطلب ده او خلی خلی پروګرام نه هان کیږي صرف دان نه چې ډنګ ډنګ دای لیا نور څه لیا کریمینا دی لیا کاسمیټک پروګرام نه دی نه نه نه بلکې د رډیو منټ 8.4 کرک شو ډیر خلی خلی पॉजिटिव जिकिमिकना ढेर मालूमती मालूमती तो जिकिमिकना झाकड़ा तो से पॉजिटिव सोच इंशाल्लाह जिकिमना जुड़ी जी

जी जनाब, शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिफा कंपनी चे सुमरा प्रोडक्ट थी जनाब पदेश हो तो सिता खाली कूपन में लवी जी खाली कूपन डा कई दिकंदूर सराय जमा कह तो सिता जबरदस्त पलक ड्राशे बेहतर।

0: आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।
1: कचरता तासो डेर जात इलजुना मुकड़ी और फर्क नहीं फैशली नो द परेशाना की दो जरूरत निश्चा डॉक्टर मुस्तफा कमाल से चिक्किनी दरमान होम्योपैथिक सेंटर के सहर अतोबजुना अखला माखाम पिंजो बजो पड़ी चिकम की कई मुख्तलिफ बीमारियानो इलाज चिकम के शामिल दी रंगौड़ा शुगर ब्लड प्रेशर दजनाना मर्दना पट अमराज गुर्दे कानी और त्रिखे कानी हेपेटाइटिस ABC और नूर द गर्ज में बीमारो इलाज कई चिपत यदा दरमान होम्योपैथिक सेंटर खुशहाल खान हटक यूनिवर्सिटी तबलीग मरकज सरनिजदे मोबाइल नंबर 03-31-12-12-413।

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: तेरी दुनिया मेरे रब्बा, क्यों मुझे ही रास नहीं।
3: लम्हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़, रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
4: द करक अनूर शो ख्वाखल को द पारा द खुशाले खबर। उस्तासो पा खपल खार करक की द डीरो गण बीमारो लका शुगर, अरकुन निसा, फालिज, जोड़न बीमारी, गुर्दों की कहानी, त्रिख की कहानी, बेऔलादी, बावसीर, मैदी जख्म, ब्लड प्रेशर, लोगन लगे दिल, द वजूद सुस्ती, प्रास्टेट, दमला दर्द, द जोड़न बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औखकारे बीमारों पर शमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सईद जाकिर शाह बाचा से अपना कवली शे सूखची डी चिमिस बी चिमिस आर चिम्पी और नूर सनदुना तरला से कौन की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दी नंबर राबित उकड़े 0331-52-65-340। पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर, मलिक सिंजित मखामख, सिविक प्लाजा, जेल चौक, खरग।

में। हाँ मुस्का मुस्कायम द दुनिया सराजा, मुस्का मुस्कायम द दुनिया सराजा, जवन जमा टोल पर इम्तिहान के द्रुमे द जनान गमा। यद जनान गमा ख्वार उजार देखड़मा, द जनान गमा ख्वार उजार देखड़मा, और रज जमा खर बतावान के द्रुमे। ददी दुनिया न झोक धर झोक रवान दी, ददी दुनिया न झोक धर झोक रवान दी, अख कीमती दिची ईमान के द्रो में। हाउ दि जनो जनो त हैरान समझेर, या दि जनो जनो त हैरान समझेर, चिखरश पे पगुमान खेत्रो में। और जरास हमदर्द ये कमरा टोल पमीना, जरास हमदर्द ये कमरा टोल पमीना, दसर गुलू न पाहिजरान खेत्रों में, दसर गुलू न पाहिजरान खेत्रों में।